0: सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणाधिपति ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवो
1: विष्णोर्परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरगः
0: वचक्षुरातम्
1: प्रासो विपन्यपो जागृवागुं सत्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम्।

ओम ओम नमो भगवते रुद्राया ओम नम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः स्वाहा यात इषः शिवतमा शिवम् अभोवते धनुः शिवाशर्व्याय तपतगानो रुद्र स्वाहा तपतगानो

हरिः ॐ श्रीमात्रे नमः साईरामा बीजापूरगदेक्षु कार्मुक बीजापूरगदेक्षु कार्मुकलसच्चक्राब्जपाशोत्पल व्रीह्यग्रस्वविषाण रत्नकलश प्रोज्यत्कराम्बूरुहा जेयो वल्लभया सपद्मकरया श्लिष्टोज्ज्वलद्भूषया विश्वोत्पत्ति विपत्ति संस्थितिकरो विघ्नेश इष्टार्थदगा ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं

0: भगवान श्री सत्य साई बाबा सेस
1: हाउ कैन लव बी कल्टिवेटेड इट कैन बी डन थ्रू टू मेथड्स वन ऑलवेज कंसिडर द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स हाउएवर बिग टू बी इनसिग्निफिकेंट एंड नेग्लिजिबल कंसिडर योर ओन फॉल्ट्स हाउएवर इनसिग्निफिकेंट एंड नेग्लिजिबल एज बिग एंड फील सैड एंड रिपेंटेंट By these means, you acquire the qualities of brotherliness and forbearance. 2. Whatever you do, whether alone or with others, do it remembering that God is omnipresent. He sees, hears, and knows everything. Whatever you do, discriminate between right and wrong, and do only what is right. Endeavor at every moment to be aware of the omnipotence of God.

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सह सुमाणी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा किलबिख काटणु हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दातै दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजै। गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसिया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुख अंदा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हौमै बंधन कमाए जमन मरन सिर।

आपे कीमत पाएं दा प्यारा, आपे करे सो होए, आपे अलख ना लखिया प्यारा, आप लखा वै सोए। आपे गहर गंभीर है प्यारा, ते जे वडियावर ना कोए, सब कट आपे भोग वै प्यारा, विच नारी पुरख सब सोए। नानक गुप्त वर्त दा प्यारा, गुरमुख प्रगट होए, सोरठ महला चौथा, आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थापो थापै, आपे वेख वेखदा प्यारा, कर चोज वेखै प्रभ आपै, आपे वंतन सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापै, जप मन हर हर नाम रस त्रापै, अमृत नाम महारस मीठा, गुरसबदी चख जापै रहाओ। आपे तीर्थ तुलहड़ा प्यारा, आप तरह प्रभ आपै, आपे जल बताईंदा प्यारा, सब जग मछली हर आपै, आप अपुल ना भुले प्यारा, अवर ना दूजा जापै, आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुने आप बजाए आपै, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तपता पै, आपे सतगुरु आप है चेला, उपदेश करै प्रभ आपै, आपे नाउ जपाएं दा प्यारा, आपे ही जप जापै, आपे अमृताप है प्यारा, आपे ही रस आपै, आपे आप सलाहां दा प्यारा, जन नानक हर रस त्रापै, सोरठ महला चौथा, आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तोलाया, आपे साहो आपे वणजारा, आपे वणज कराया, आपे धरती साजियन प्यारै, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया, हर हर नाम निदान है प्यारा, गुरपूरै मीठा लाया रहाओ। आपे धरती आप जल प्यारा, आपे करे कराया, आपे हुकुमर दा प्यारा, जल माटी बंद रखाया, आपे ही पाओ पाएं दा प्यारा, बन बकरी सीहो हडाया, आपे काष्ट आप हर प्यारा, विच काष्ट अग्न रखाया, आपे ही आप वरत दा प्यारा, पै अग्न ना सकै जलाया, आपे मर जीवाएं दा प्यारा, साह लैंदे सब लवाया, आपे तान दीवान है प्यारा, आपे घर लाया, जो आप चलाए त्यों चली है प्यारे, जो हर प्रभ मेरे पाया, आपे जंती जंत है प्यारा, जन नानक वजह वजाया, सोरठ महला चौथा, आपे सृष्टि पाएंदा प्यारा, कर सूरज चंद चाणान, आपने ताणिया तान है प्यारा, आपने माणिया मान, आप दया कर रखदा प्यारा, आपे सूड सुजान, मेरे मन जप राम नाम निशान, सत संगत मिल त्याए तू हर हर, बहु

हर जन को ही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कह लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मैं विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पावै जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावै जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवां हम मैले तुम यूजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकर देसा रहाओ तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेरवाना तुम करो भला हम पलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचै कहो नानक हम एह हवाला राख संतन कै पाचै सोरठ महला पंजवां कर दूजा मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे पावक सागर

संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा, संतन स्यों हमलाह खाटिया, हर भगत भरे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहां करै गो, जो फाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद भय सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर स्यो मन मानिया, रंग रते बिस्मा दे। सोरठ महला पंजवां,

0: गोष्ठ ज्ञान नाम सुनि उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना आनंद सेती कर आया। सोरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला थे दुख बिन से सुख पाया। दयाल होवा पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग राता रहाओ। सतगुर नाम निदान दृढ़ाया चिंता सगल बिनासी कर कृपा अपनो कर लीना मन वसिया अविनासी। ता को बिघन न को लागे जो सतगुर अपने राखे चरण कमल बसेर दे अंतर अमृत हर रस चाखे। कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दास तां कै बलिहार है जिन पूर्ण पैज रखाई। सोरठ महला पंजवा माया मोह मगन अंधियार है देवन हार ना जाने जियो पिंड साज जिन रचिया बल अपनो कर मन है। मन मूड़े देख रहे हो प्रभ स्वामी जो कुछ करे सोई सोई जाने रह न कछु ऐशानी रहाओ। जेहबा स्वाद लोभ मद माताओ उपजे अनक बेकारा बहुत जोन भरमत दुख पाया हम बंधन के पारा। दे के वाड़ अनक पड़दे मैं परदारा संग फाकै चित्र गुबत जब लेखा मांगे तब कौन पड़दा तेरा टक है। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन तुम बिन ओटना काई काढ़ लेहो संसार सागर मैं नानक प्रभ शरणाई। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म होवा सहाई कथा कीर्तन सुखदाई। गुरपूरे की बाणी जप अंत करो नित प्राणी हर साचा सिमरो पाई। साध संग सदा सुख पाई है हर बिसरना कब हूं जाई रहाओ। अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरै सो जीवै जिसनो कर्म प्राप्त होवै सो जन निर्मल थीवै। बिघ्न विनाशन सब दुख नासन गुरचरणी मन लागा गुण गावते अच्युत अविनाशी अंधन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए हर की कथा सुहेली आद अंत मद नानक कहो सो प्रभ हो आबेली। सोरठ महला पंजवा पंच पदा बिनसै मोह मेरा यार तेरा बिनसै अपनी तारी संतो यह बतावो कारी जित हो मैं गर्भ निवारी रहाओ। सर्वभूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी पेख्यो प्रभ जियो अपने संगे चूके पीत परमारी। औखद नाम निर्मल जल अमृत पाइये गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुरमिल रोग बेदारी।
1: You are listening to Radio Sai Global Harmony. Radio Sai brings to you every day the teachings and the universal message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.